0: छुटै
1: जैस कटे लक को उठ दावै
0: जितनावै माया पाछे पावै
1: अनंग भोग विखिया के करे
0: जितावै खम खम मरे
1: बिना संतोख नहीं को राजे
0: सुपन मनोरथ मिथे सब

0: स्वामी
1: अपनी कृपा जैसे आप करे
0: नानक सो सेवक गुरु की मत ले
1: विश्व गुरु का मन मान
0: सेवक परमेश्वर की गत जान
1: सो सतगुरु।

0: सब कहत
1: जो जो होए सोई सुख माने
0: नानक रावण हार प्रभु जाने
1: अंतर बसे बार भी ओही
0: नानक दर्शन देख सब मोही
1: आप सत किया सब सत
0: इस प्रभु दे सगली उत्पत
1: इस भावे ता करे विस्तार
0: इस भावे ता एक अहंकार
1: अनक कला लखी ना जाए
0: इस भावे तसलै मिलाए
1: कवन निकट कवन कहिए दूर
0: आपे आप भरपूर
1: अंतर्गत जिसे आप जनाए
0: नानक तिस जने आप बुझाए
1: सर्वभूत आप वरताए।

0: गुरु प्यारी साध संगत, अखंड पाठ प्रकाश हो चुका है। तन तन साहिब श्री गुरु अमरदास जी महाराज का प्रकाश दिहाड़ा जो सिनचरवार आ रहा है सैटरडे दोपहरे सुखमनी साहब पढ़ के उस तो बाद अखंड पाठ के भोग पावांगे। आओ सर्व करो पाठ जी। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की।
1: गावे को गुण वडियाईया चार, गावे को विद्या विखम विचार, गावे को साज करे तन खे।

कवन सुबेला भगत कवन कवंत कवन वार कवन से रुति माह कवन जत हुआ आकार वेल न पाया पंडित जय होवे लेख पुराण भक्त न पायो का दिया जे लिखन ले कुरान ते त्वार न जोगी जाने रुत मार न कोई जाकरता श्री टिको साजे आप जान सोई केव करे आका केव साला ही केव वर्णी केव जाना नानक अखण सबको आख एक दो एक सियाणा

पूर्णिया मनमोहन सुरगा मच पायाले गाव रत्न पाए तेरे अड़सर तीर्थ नाले गाव जोत महापरसुरा गाव खाणी चारे गाव खांड मंडल वर पंडा कर कर रखे तारे सही तुन गाव जो तुत पावन रते तेरे भगत रसाले होर कहते गावन से मैं चित नयामन नाने क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहिब सचा सच नाई है पी हो सी जाय न जसी रचना जिंद्र।

जुगत के रंग तिनके नाम अनेक आनंद कर्मी कर्मी होय विचार सच्चा आप सच्चा दरबार तिथे सोन पंच परवान नदरी करम पवे निशान का चबकाए उतै पाए नानक गया जापे जाए धर्म खंड काए हो धर्म ज्ञान खंड काए आखो करम केते पौन पाणी।

ज्ञान मन कहते कहते रतन संबंध कहते अखाणी कहते अवाणी कहते पाद नरेंद्र कहते श्रुति सेव कहते नानक अंत नायंत ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड तिथे नाद विनोद कोड आनंद शर्म खंड की बाणी रूप तिथे काढ़त कड़ी है बहुत अनुपता की अगला कथिया न जाए देखो कै पिछे पछताए तिथे कड़े सुरत मत मन बुद्ध तिथे कड़े सुरा सदा के शुद्ध कर्म खंड की बाणी जोर तिथे होर न कोई होर तिथे जोत महाबल सूर तिन मह राम रहा भरपूर तिथे सीतो सीता मह मामाए ताके रूप न कथ न जाए ना हो मरे न ठगे जाए जिनके राम वसै मन माए तिथे भगत वसै के लोग कर आनंद सच्चा मन सोए सच खंड वसे निरंकार कर कर वेखे नजर निहाल तिथे खंड मंडल वर भंड देखो कथे तायंत नायंत तिथे लो लो आकार जिव जिव हुक्म त्वेत विकार वेख्या विकसै कर विचार नानक कथना करड़ा सार जत बार तिरे सुनियार आयरन मतवेद हथियार पौख लागन तब ताओ पांडा पाऊ रवत चाल कड़िय सब सचेटक साल जिनको नजर करम चिनकार नानक नदरी नजर निहाल सुलो पवन गुरु पाणी पिता माता तरत महत देवसरा देवदाई दाया खेले सगल जगत चंगियाई।

तेरे भक्त सलाहन तुझी। हारे अनक अनेक अनंता तेरी, अनक तेरी अनकरे हर पूजा जी। तब तापे जपे बेअंता तेरे अनेक, तेरे अनेक पड़े वो सिमर शास्त्र जी। कर करे आखड़ कर्म करंता।

जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारे साध संगत बड़भागी माई भाई जिन्होंने समा मिलया है भाई शामा दे दीवाना विच हाजरी भरन दा सतगुरु रहमत करन आप सारे दी हाजरी दर प्रवान करन दरों करो नाम दी दात गुरसिखी जीवन बख्शन सुहाओ हुण आपां सत्कार योग भाई साहब भाई गुरबीर सिंह जी दे जथे पासों कीर्तन आरती साहिब दा जाप सरवण करिए जी। इस दे नाल ही जिस तरह आप सारे जानते हो तन तन साहिब श्री गुरु अमरदास जी महाराज जी का प्रकाश दिहाड़ा सैटरडे आ रहा है। उन्होंने प्रथाई अखंड पाठ हुणे हुणे शुरू किए ने। उन्होंने भोग सैटरडे शामा पवेगा। सो बेनती है वह चढ़ के आओ महान गुरु का प्रकाश दिहाड़ा अपन सारे रल मिल के मनाइए। आओ कीर्तन सुरवण करो जी। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।

परम सन्मान योग चुको चुक अटल चवर शतर तखत दे मालक धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी की पावन गोद विच साजी निवाजी गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जीओ आप सारे विभागी हो धनता दे योग हो जो सतगुरां दी पावन गोद विच बैठ के मीडिया राही गुरु चरणा नाल जुड़ के सतगुरां दी पावन बाणी अमृतमई बाणी सरवण करके आत्मक आनंद माण रहे हो अपना ये मनुखा जन्म सफला कर रहे हो। आओ जो सामने दीवाना विच लड़ीवार विचार चल रही है वो विचार आपां सांझी कर सकीए। विचार आरंभ करन तों पहला सतगुरां दी बख्शी हुई फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जिस पावन शब्द की आपां विचार कर रहे हाँ वो पावन शब्द पहले पातशाह धन धन गुरु नानक देव साहिब सच्चे पातशाह जी की पावन रचना तो उच्चारण किया होया। आसा राग विच गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंग 414 415 उत्ते सुशोभित है। उस शब्द के चार पदे आपां विचार चुके हाँ। पंजवे पदे विच धन गुरु गुरु नानक साहिब सच्चे पातशाह जी बख्शिश करते ने जहां नाम मिले तहां जाओ। हे वाहिगुरु जी मेरी तेरे चरणा च अरदास है कि जिथे मैनू तेरा नाम मिले तेरे नाम की प्राप्ति होवे मैं उत्थे जावां। भाव यह है कि यह नाम फिर मिलेगा कितने। गल यह है पहले पातशाह जी कह रहे ने कि वाहिगुरु जी मैं उत्थे जावां जिथे तेरा नाम मैनू प्राप्त होवे तेरा नाम मिले। ये पा फिर वो जगह लभीए जिथे परमात्मा का नाम मिलता है वह लभनी पेगी थां वह गुरबाणी नूं ही आपां पुछीए। पंजवे पातशाह जी कहिंदे ने कहिण लगे अमृत नाम निर्मोलक हीरा गुरु दीनो मनतानी। अमृत नाम परमात्मा का जिहड़ा नाम है वह आत्मक जीवन देण वाला है। जदों नाम की गल आवेगी कई रूपां विच सतगुरां जी ने नाम नूं बयान किया है।

आत्मक जीवन देण वाला भी आख्या है, नाम नू सुखां दा दाता भी आख्या है। बहुत उपमा सतगुरां ने नाम नू दित्तियां ने। ते सतगुरु जी कहिंदे ने, कहिण लगे प्यारियो, इह जिहड़ा नाम है इह बड़ा कीमती है, बेसकीमती है, आत्मक जीवन देण वाला है। अमृत नाम परमात्मा का जिहड़ा नाम है आत्मक जीवन देण वाला है। जिहड़ा मनुख परमात्मा का नाम सिमरदा है उस मनुख की आत्मक मौत नहीं हुंदी। भाव यह भी ओ मनुख दुख विच सुख विच कदे भी अत दा निराश नहीं हुंदा, नहीं हुंदा, क्योंकि वो नाम नाल जुड़िया होया। नाम ने अंदर नू संतोखी बना देना है। परमात्मा दे नाम तो बिना मनुख संतोखी नहीं बन सकता, क्योंकि दुनिया भी धन दौलत पदार्थ यह तां जिन्ने मनुख दे कोल वधदे जांदे ने उन्नी ही बंदे की तृष्णा भी नाल वधदी जांदी है। एक किसी बंदे का छोटा कारोबार होए वह 100-200 च खुश हो जाता, किसी बंदे का उस तो वड्डा कारोबार होए वह कहिंदे भी मेरे हजारां डेली बनने चाहिए, उस तो भी वड्डा कारोबार होवे वह कहिंदा भी मेरे तो 10-20 हजार डेली बनने चाहिए। कहण दा भाव यह है कि गुरबाणी कहती है, सहस खट्टे लख कूट धावै तृप्त ना आवै माया पाछै पावै, नहीं तृप्ति होंदी। पंजवे पातशाह जी कहते ने, बिना संतोख नहीं को राज है, पर संतोख देखना पेगा, संतोख आवेगा कि नहीं। गल ए है ना, इहदी रूट देखनी पेगी, इहदी जड़ देखनी पेगी, इहदा मूल देखना पेगा। जे किते संतोखी बनना है, संतोख दा धारनी बनना है, ते फिर इह मिलेगा कितों संतोख। ते पातशाह कहते ने, अमृत नाम निर्मोलक हीरा, निर्मोलक बड़ा कीमती हीरा है परमात्मा का नाम। जो तृष्णा की अग लगी हो ना, फिर गुरदेव कहते ने, कह लगे प्यार ओ, फिर यह जिहड़ा नाम है यह जल का काम करता है। नाम जल, क्योंकि तृष्णा के अंदर भांबड़ मचते हैं। तृष्णा एक अग है। अग दा भाव यह भी, जिस बंदे दे अंदर तृष्णा वधेरे लगी होवे अंदर इवे मचदा है जिवें अग मचदी है। हुण फिर अग की करदी है, बाहरली अग भी अंदर नू साड़ के रख दिंदी है। किते अंदर अग लगी होवे ओह अंदर नू साड़ के रख दिंदी है। हुण बाहरली अग लगी होवे उस नू बुझाण दे तां, उहनू शांत करन दे तां बड़े उपराले मनुख कर लेंदा है, पर जिहड़ी अंदर तृष्णा की अग लगी हुंदी है, यह जिहड़ी भुख लगी हुंदी है, यह नहीं छेती बुझदी। यह दुनिया भी किसी तरीके नाल, बाहर दी तरीके नाल नहीं बुझदी। ते गुरबाणी नूं ही पुछिए, सतगुरु जी जे अंदर तृष्णा की अग लगी होवे फिर वह किवें बुझ सकती है? सतगुरु जी कहिंदे ने, तृष्णा बुझै हर कै नाम। बस इको एक तरीका है, नाम जल है। जदों अग ते पानी पाया जावे, जल पाया जावे, ओ बुझ जांदी है। अंदर अग लगी होवे बंदे दे ते जदों नाम जल दे छिट्टे पैंदे ने ते फिर ओ अंदर दी अग बुझदी है। होर किवें बुझदी है? जदों गुरबाणी दा पाठ होवे, कीर्तन होवे, कथा होवे, इवें मनो कि यह नाम की बारिश हो रही है, परमात्मा के नाम की बारिश हो रही है। जिवें जिवें मनुख सतगुरां की पावन बाणी नूं भावना लैके सुनदा है, कीर्तन सुनदा है, कथा सुनदा है, अंदर नूं बड़ा सुकून मिलता है, बड़ा सुकून मिलता है। फिर मन कहिंदा, मना कि थोड़ी देर होर पाठ सुन लईए,
ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮਨਾ ਕਿਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੋਰ ਸੁਣ ਲਈਏ। ਜੇ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲਦੀ ਹੋਣ, ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ, ਕਿਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬੈਠ ਕੇ ਹੋਰ ਸੁਣ ਲਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਤੇ ਬੰਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਨਿਰਮੋਲਕ ਹੀਰਾ ਗੁਰ ਦੀਨੋ ਮੰਤਾਨੀ। ਮੰਤਰ ਵੀ ਆਖਿਆ, ਮੰਤਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ। ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਹਾਂ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਤਹ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂ ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਮਿਲੇ। ਹੁਣ ਨਾਮ ਆਪਾਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਨਾਮ? ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਈ ਇਹ ਨਾਮ ਮਿਲਦਾ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਨਿਰਮੋਲ

मेरे वास्ते ओही वाधू है। जो मैनू मेरे रब ने दिता है ओही मेरे वास्ते वधिया है। वह दूजिया के घर वाल नहीं झातदा। फिर एक होर गल अगे गुरदेव कहिंदे ने, कहन लगे हम ओए जो बीच हम तुम कछ होते तिनकी बात बिलानी। पहला तेर मेर सी, पर जो गुरु ने कृपा की नाम रूपी हिरदा नाम रूप हीरा हिरदे च वसा दिता, ते कहन लगे हुण गल ए बन गई, हुण इहदी मेर तेर हट गई। ये मेरा है, ये तेरा है, ये उसका है। जिहड़ी मेर तेर सी ओ गल ही मुक गई। हुण तां भाई सारा अपना ही है, सारे ही अपने ने। पहले की सी, पहले कोई अपना लगता सी, कोई बेगाना लगता सी। कईयां दे नाल दोस्ती सी, कईयां दे नाल दुश्मनी सी,

एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार। श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ते आए। फिर अंगद गुरु ते अमरदास रामदास हुई सहाय। अर्जन हर गोबिंद नाम सिमरऊ श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ते आई है जिस डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरिया कर नाउ नि दयावे ताए सब थाई हुए सहाय। दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई हुए सहाय।

वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुर
guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru,

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहे

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहे

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहे

गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह

चलै जह मुस्कल होवे हत भारी हर को नाम खिन माहि उधारी अनक पुनः चरण करत नहीं धरे हर को नाम कोड पाव पर हरे गुरमुख नाम जप मन मेरे नानक पाव सुख कनेरे सगल सृहित को राजा दुखिया हर का नाम जपत होए सुखिया लाह करोरी बंधन परे हर का नाम जपत निह धरे अनक माया रंग तिख ना बुझावे हर का नाम जपत आगावे जिह मार गिह जाते अकेला तह हर नाम संग होत सुहेला ऐसा नाम मन सदा त्याई नानक गुरमुख परम गत पाई है।

संत दर्द दुख लथा, नाम संत दर्द दुख लथा, नाम की महिमा संत रिद वसै, संत प्रताप दुरत सब नसै, संत का सांग विड़ भागी पाई।

स्मृति पेखे सर्वडोल पूज सनाही हर हरे नानक नाम अमोल अष्टपदी जाप ताप ज्ञान सब ध्यान खड़ सा त्रि सिमरत बखियान जोग अभ्यास कर्म त्रम क्रिया सगल

परमेश्वर है। जेको जन मरण ते डरे साजन की सरनी पैरे, जिह जन को प्रभु दर्स प्यासा, नानक ता कै बल मल जासा। सगल पर

काल मिथ्या काम क्रोध विकराल मिथ्या रथ हती अस बहतरा मिथ्या रंग संग माया पे खस्ता मिथ्या त्रोह मोह अभिमान मिथ्या शिव प्रकृत गुमान अस थिर भगत साध की शरण नानक जाप जाप जीव हर के चरण मिथ्या श्रवण पर निंदा सुन है मिथ्या हस्त पर दर्भ को हिर है।

चै जिस प्रसाद रिको ना प्रभु चै मन सास साह सिमरह प्रभु चे जिस प्रसाद पाई दुर्लभ देह नानक ता की भगत करे जिस प्रसाद भुखन पहरी जय मन तिह सिमरत क्यों आलस की जय जिस प्रसाद असब अति सवारी मन तिह प्रभु को कबहु ना बिसारी जिस प्रसाद बाग मिलिख तना राग परोए प्रभु परे मना जन तेरी मन बंत बनाई उठत बैठत साध तिसे त्याई तिसे त्याए जो एक अलख है ईहा ऊहा नानक तेरी रखै जिस प्रसाद करहि पुन बोदान मन आठ पैर कर तिसका ध्यान जिस प्रसाद तू अचार विहारी तिस प्रभु को साथ साथ चितारी जिह प्रसाद तरा सुंदर रूप सो प्रभ सिमरव सदा नूप जिह प्रसाद त्रिनी की जात सो प्रभ सिमर सदा दिन रात जिह प्रसाद तेरी पत रह गुर प्रसाद नानक जस कह जिह प्रसाद

योग साध की महिमा वेद न जाने जेता सुनह ते तब खयाने साध की उपमा ते गुण ते दूर साध की उपमा रही पार पूर साध की शोभा का नाही अंत साध की शोभा सदा बेअंत साध की शोभा उचते उची साध की शोभा मूच ते मूची साध

ज्ञानी का वर प्रताप, ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाइए, ब्रह्म ज्ञानी का बाल बाल जाइए, ब्रह्म ज्ञानी कहो खोजे हे महेश्वर नानक, ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी की कीमत ना है, ब्रह्म ज्ञानी कै सागल मन माहे, ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद, ब्रह्म ज्ञानी को सदा देश, ब्रह्म ज्ञानी का कसे न जाय दाखिर, ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर, ब्रह्म ज्ञानी कीमत कौन बखाने, ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने, ब्रह्म ज्ञानी काम तरह पार नानक, ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार, ब्रह्म ज्ञानी सब श्रेष्ठ का करता, ब्रह्म ज्ञानी सद जीव नहीं मरता, ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता, ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सब प्रभात, ब्रह्म ज्ञानी का सगल कार, ब्रह्म ज्ञानी आवृंकार, ब्रह्म ज्ञानी की शोभा, ब्रह्म ज्ञानी बनी नानक, ब्रह्म ज्ञानी सर्व का तनि श्लोक, उरतार है जो अंतर नाम, सर्व में पेख है भगवान निमुख।

है, कई कोड़ जोनी फिर है, कई कोड़ बैठत ही खाहे, कई कोट काले थक पाहे, कई कोड़ किए तरमंत, कई कोट माया मह चिंत, जह जह भाणा तह तह राखे, नानक सब किस प्राप के हाथे, कई कोट भय बैरागी, राम नाम संग तिन लिव लागी, कई कोट प्रभ को खोजनते, आत्म पार ब्रह्म लहंते।

प्रभु सोए कई कोड़ पार भ्रम के दास तिन उतया तुम बृंगास कई कोड़ तत के बेते सदा निहारे को नेत्रे कई कोड़ नाम रस पीवे अमर पह सद सद ही जीवे कई कोड़ नाम गुण गावे आ तुमरा सुख सह समावे अपने जन को साथ साथ सुमारे नान कोई परमेश्वर के प्यारे सलोक करण कारण प्रवे कह दूसर नाही कोय नानक तिस बलिहार ने जल थल महियल सोए अष्टपदी करण करावन करने जोग जो तिस पावे सोई हो खिण मह था उथा पनहारा त नहीं किश

कुमार प्रीत सलोक संत सरन जो जन पर सो जन उदर नहार संत के निंदा नानका बहुर बहुर अवतार अष्टपदी।

मन कापिहि व्रजावस्पदि। जब कारिहु कहना दृष्टे ता पाप पुन तब कहते होता। जब तारी आपन संसमाल तब बैर विरोध के संग माल। जब इसका मरण चेहन ना जापत तब हरक सो कहु किसे व्याप्त। जब अपने आप आप पार ब्रह्म तब मुँह कहा किस होत पर मैं अपन खेले आवृति जाना करने हार न दूजा। जब होवत प्रभु केवल तनी तब बांध मुक्त कहो किस को गणी जावे। के रग में पार तब नरक सुर कहो कौन उतार। जब निर्गुण प्रभु सही सुपाए तब शिव सकत कहो कित ठाए। जब आपे आप अपनी जो धरे तब कमन निडर कमन कद डरे। आपन चलते आप करने हार नानक ठा कुरग में पार। अविनाशी सुख अपने आसन तह जन मरण कहो कहा विनाशन। जब पूर्ण करता प्रभु सोए तब जम की त्रास कह किस होए। जब अवगत गोचर प्रभु कहा तब चित्र गुप्त के पूत लेखा। जब नाह निरंजन गोचर गा दे तब कौन छुटे कौन बंधन बाधे। अपने आप ही आवि चर जा नानक अपने रूप आप ही उपर जा। जय निर्मल पुरख पुरख।

सच सोचाए सोच न हो भई जे सोची लख वार चुपै चुप न हो भई जे लाए रहा लिवतार भुखिया भुख न उतरी जे बन्ना पुरिया भार सहस सियाण पा लख होए ता एक न चल नाल किव सचियारा होई है किव कूड़ै तुटै पाल हुक्मर जाई चलना नानक लिखिया नाल हुक्मी होमन आकार हुक्म ना कहिया जाई हुक्मी होमन जी हुक्म मिलै वड्याई हुक्मी उत्तम नीच हुक्म लिख दुख सुख पाई है

सुनया सत्संतो ज्ञान, सुनया अड़सठ का इशनान, सुनया पड़ पड़ पावे मान, सुनया लागे सहज ध्यान। नानक भगता सदा विगास, सुनया दुख पाव का नास, सुनया सरा गुणा के गाह, सुनया सेग पीर पातशाह, सुनया अंधे पावे राह, सुनया हाथ वे सगाह। नानक भगता सदा विगास, सुनया दुख पाव का नास, मन्ने की गत कही ना जाए, जे को कह पिछ पछताए, कागद कलम न लिखण हार, मन्ने का बह करन विचार, ऐसा नाम निरंजन होए, जे

अभीत है, त्रिमान है, निदान है, त्रिवर्ग है, असर्ग है, अनिल है, अनाद है, अजय है, अजाद है, अजन्म है, अवर्ण है, अभूत है, अपर्ण है, अगंज है, अपंज है, अचूज है, अचंज है, अमीक है, रवीक है, अतंध है, अबंध है, निर्भूज है, असूज है, अकाल है, अजाल है, अलाह है, अजा है, अनंत है, महंत है, अलीक है, नरश्रीक है, नृलम्ब है, असम है, अगम है, अजम है, अभूत है, अशूत है, अलोक है, अशोक है, अकर्म है, अपर्म है, अजीत है, पीत है, अबाह है, अगाह है, अमान है, निदान है, अनेक है, फिर एक है, भुजंग प्रयात छंद नमो सर्वमाने समस्ति निदाने नमो देव देवे अपेक्षे भेवे नमो काल काले नमो सर्वाले नमो सर्वगौणे नमो सर्वौणे अनंगी अनाथे नृसंगी परमाथे नमो भान भाने नमो मान माने नमो चंद्र चंद्रे नमो भान भाने नमो गीत गीते नमो तान ताने नमो नृत्य नृत्य नमो नाद नादे नमो भान भाने नमो बाद बादे अनंगी अनामे समस्ति स्वरूपे परभंगी परमाथे समस्ति विभूते कलंक मिनाने कलंगी स्वरूपे नमो राज राजेश परम रूपे नमो जोग जे जोगेश्वर परम सिद्धे नमो राज राजेश्वर परम वृद्धे नमो शस्त्र पाने नमो अस्त्र माने नमो परम ज्ञाता नमो लोकमाता अपेक्षीय परमी अपोगीय भुगते नमो जोग जोगेश्वर परम जुगते नमो नित नारायणे नमो क्रूर नमो नित नारायणे क्रूर कर्मे नमो प्रेत अप्रेत देवस्वधर्मे नमो रोगहर्ता नमो राग रूपे नमो शाह शाहंग नमो भूप भूपे नमो दान दाने नमो मान माने नमो रोग रोगे नमो संसनाने नमो मंत्र मंत्र नमो जंत्र जंत्र नमो इष्ट इष्टे नमो तंत्र तंत्र सदा सचदानंद सर्व प्रणासी अनुपे रूपे समस्वल निवासी सदा सिद्धदा बुद्धदा विरुद्धकर्ता अदो ऊर्ध अर्धंग अगंग ओघहर्ता परंग परंग परमेशंग रोज पालंग सदा सर्वदा सिद्धाता दयालंग अशेदी अपेदी अनामंग अकामंग समस्तो पराजी समस्तत्तामंग तेरा जूर चाचरी शांद जले है थले है अपीत है अपे है प्रभु है अजू है अदेश है पेश है पुजंग प्रयाद शब्द अगाध्य अबाध्य आनंदी स्वरूपे नमो सर्वमाने समस्ति निदाने नमास्तवंग निर्नाथे नमास्तवंग परमाथे नमास्तवंग अगंजे नमास्तवंग अपंजे नमास्तवंग अगाले नमास्तवंग अपाले नमो सर्व देशे नमो सर्पेशे नमो राज राजे नमो सा साजे नमो शाह शाहे नमो माह माहे नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोख रोखे नमो सौ सौखे नमो सर्वरोगे नमो सर्वोगे नमो सर्वजीतंग नमो सर्वीतंग नमो सर्वंगे नमो सर्वज्ञाने मरम नमो नमो सर्वज्ञानं नमो परम तानं नमो सर्वमंत्रं नमो सर्वजंत्रं नमो सर्वदृशं नमो सर्वकृष्णं नमो सर्वरंगे तरभंगी रंगे नमो जीव जीवं नमो बीज बीजे अगजे अभिजे समस्तं प्रसिजे कृपालं स्वरूपे कुकर्मं प्रणासी सदा सर्वदा हृदय सदंग निवासी चरबड़ छंद त्वप्रसाद अमृत कर्मे अमृत धर्मे अखल जोगे अचल भोगे अचल राजे अटल साजे अखल सर्वंग अल्लाह कर्मं सर्वं अलख कर्म सर्वंग दाता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग पाने सर्वंग माने सर्वंग प्राणं सर्वंग त्राणं सर्वंग पुक्ता सर्वंग जुगता सर्वंग देवं सर्वंग पेम सर्वंग काले सर्वंग पाले रुवाल छंद त्वा प्रसाद आद रूप अनाद मूर्त अजोन पुरख अपार सर्वान त्रमान देव अभेवाद उदार सर्व पालक सर्व कालक सर्व कोपन काल जतर ततर विराज अवधूत रूप साल नाम ठामना जात जाकर रूप रंग नारेख आद पुरख उदार मूर्त अजोन आद अशेख देश और न पे जाकर रूप रेखना राग जतर ततर दिशा विशा हो फैल यो अनुराग नाम काम विहीन पेख ताम हु नह जाहे सर्वान सर्वतर्मान सदय मानता है एक मूर्त अनेक

चाकर जन मरण विहीन चाकर बकर भिरे चतुर चुक मानी प्रतीन लोक चौदह के बिखे जग जाप हिंजे जाप आदे बनाद मूर्था प्यो सब जय थाप परम रूप नीत मूर्त पूर्ण पुरख अपार सर्विश्व रचियो स्वयंभव गण पंजन हार कालहीन कला संयुक्त अकाल पुरखा देश धर्म धाम सो परम रहता भूत लख अभेश अंगरागन रंग जाके जात पात न नाम गर्भ गंजन दुष्ट भंजन मुख दाय काम आप रूप अमीक अनुसत एक पुरख अवधूत गर्भ गंजन सर्वंजना असूत अंगहीन भंगनात्म एक पुरख पार सर्वलायक सर्व कायक सर्व प्रपार सर्वगंता सर्वंता सर्वदेन भेख सर्व शास्त्र न जाने जे रूप रंग अरेख परम वेद पुराण जाके नेत भाखत नेत कोड सीमृत पुराण शास्त्र

अच्छा पूर्ण वे चतगीषा तब चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो व्रत बार अमरे दुष्ट सभा तुम गावो आप हाथ दे मोए बचावो सुखी बस मोरो परवार सेवक सिख सभाए करतार मोर इच्छा निज कर दे कर सब बैरण गो आ संग्रह पूर्ण वे हमारी आसा दौर भजन की रहे प्यासा तुम्हें शाड़ कोई अवर न त्याऊ जो बर चाहूं सो तुम ते पाऊ सेवक सिख हमारे तारी है चुन चुन सदरु मारे मारी है आप हाथ है मुझे भर है मरण काल का त्रासन भर है उजो सदा हमारे पच्छा श्री सुजू करे रक्षा।

अपने रचियो नाओ दोए कुदरे साजे कर आसन डिठो चाओ दाता करता पुस्ते वह करे पसाओ तू जाना सब सह दिल सजन कवाओ कर आसन डिठो चाओ कर

कूड़ा लाल छिटे मलकते आई है फालती भी पाई है जिवे ही घर कमाई है जे होवै बुर्ग लिखिया तो धूड़ तिना दी पाई है मत थोड़ी सेव गवाई है मत थोड़ी सेव गवाई है।

0: कृपा करिता साईकार कराए सी सो से उस वाकर जिस हुकुम बनाए सी हुकम मन्य होवे प्रमाण तक कच में कमेल पाए सी कस में पावे सो कर मन चंदे सो फल पाए सी तदर के पैदल जाए सी तदर के पैदल जाए सी
1: कोई गावे रगिना दी बेगा।

परम सम्मान योग जुग जुग अटल चवर शतर तख्त दे मालक धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी की पावन गोद विच साजी निवाजी गुरु रूप साध संगत जीओ अते मीडिया राही गुरु चरणा नाल जुड़ बैठी साध संगत जीओ आप सारे विड़भागी हो तंता दे योग हो जो सतगुरां दे चरणा नाल जुड़ के सतगुरां दी पावन बाणी अमृतमई बाणी सरवण करके आत्मक आनंद माण रहे हो अपना ये मनुखा जन्म सफला कर रहे हो। आओ अज जो सतगुरां ने अमृत वेले पावन हुक्मनामा बख्शिया उसदी विचार आपां कर सकीए। विचार आरंभ करन तों पहला सतगुरां दी बख्शी हुई फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज जो सतगुरां ने पावन फुरमान बख्शिया ओ पावन शब्द चौथे पातशाह धन धन गुरु रामदास पिता जी दी पावन रसना तो उच्चारण किया होया। जैतसरी राग दे अंदर गुरु ग्रंथ साहिब जी दे अंग 696 उत्ते सुशोभित है।

नो दर्श दि जय दस गाव निसर भोर केस संग दास पग चारो एह मनोरथ मोर ठाकर तुझ बिन बिया न होर चितव हर रसन अराधो निरखो तुमरी ओर राहो दयाल पुरख सर्व के ठाकर बिनो करो कर जोर नाम जपै नानक दास तुम रो उदरस आखी फोर गुजरी महला पंजवा ब्रह्म लोक अर रुद्र लोक आई इंद्र लोक ते ताए सा संगत को जोय न साकै मल मल तो वै पाए अब मोहे आए पर ओ शरणाए गोहज पाव को बहुत पर जा रै मोह को सदगुरु दियो है बताए राओ सिद साद कियर जाख किन्नर नर रही कंठ हृदय जन नानक अंग किया प्रभ करता है जाके कोट ऐसी दासाए गुजरी महला पंजवा आप जस मिट होवे जग कीरत दरगाह बैसन पाई है जम की त्रास नास होए खिन में सुख आनंद सेती कर जाइए जानते काल न बिरथी जाइए आठ पैर सिमरो प्रभ अपना मन तन सदा त्याइए राव मोहे शरण दीन दुख भंजन तू देहे सोई प्रभ पाइए चरण कमल नानक रंग राते हर दास पैज रखाइए गुजरी महला पंजवा बिस्वंबर जीन को दाता भंडार परे भगत परे भंडार जाकी सेवा ने फल ना होवत खिन में करे उदार मन मेरे चरण कमल संग राच सगल जी जाको आराधय ताहू को तू जाच रहो नानक शरण तुम्हारी करते तू प्रप्राण आधार होए सहाय जिस तू राखें तिस कहां करे संसार गुजरी महला पंजवा जन की प्याज सुवारी आप हर हर नाम दियो गुरु औखद उतर गयो सब ताप रहो हर गोविंद रखियो परमेश्वर अपनी कृपा तार मिटी ब्याद सर्व सुख होए हर गुण सदा विचार अंगीकार कियो मेरे करता है गुरु पूरे की वडियाई अब चल नीम तरी गुरु नानक नित नित चढ़ाए सवाई गुजरी महला पंजवा कबो हर सौ चीत ना लायो धंधा करत बिहानी अवदाय गुण निध नाम ना गायो राव कौडी कौडे जोरत कवटाए अनेक जुगत करत आयो बिसरत प्रभ कित दुख गनिए महा मोह निखायो करो अनुग्राह स्वामी मेरे गुनो न मोह कमायो गोविंद दयाल कृपाल सुसागर नानक हर शरण आयो गुजरी महला पंजवा रसना राम राम रवंत छोड़ आन व्यवहार मिथ्या भज सदा भगवंत रहो नाम एक आधार भगता ईत आगे टेक कर कृपा गोविंद दिया गुर ज्ञान बुद्ध भवेक करण कर समरथ श्री धर शरण तंकी गही मुक्त जुगत रवाल साधु नानक हर निध लही गुजरी महला पंजवा कर चौथा चौप दे एक ओहकार सतगुरु प्रसाद छाड़ सगल स्याणपा साध सरणी आओ पार ब्रह्म परमेश्वरो प्रभु के गुण गाओ रे चित चरण कमल आराध सर्व सु कल्याण पाप है मिटे सगल उपाद राव मात पिता सूत मीत भाई तिस बिना नहीं कोई ई तूत जी नाल संगे सर्व रव्या सोए कोट जतन पाव मिथ्या कछु न आवै काम शरण साधु निर्मला गत होए प्रभु कै नाम अगम दयाल प्रभु ऊचा शरण साधु जोग
ਤਿਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾਨਕਾ ਜਿਸ ਲਿਖਿਆ ਤੁਰ ਸੰਜੋਗ ਗੁਜਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਆਪਣਾ ਗੁਰ ਸੇਵ ਸਦ ਹੀ ਰਮੋ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਧ ਸਾ ਸਿਰਾਧ ਹਰ ਹਰ ਲੈ ਜਾਏ ਮਨ ਕੇ ਚੰਦ ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਾਪ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਨਾਉ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਆਨੰਦ ਪਾਵ ਹੈ ਮਿਲੀ ਨਿਰਮਲ ਥਾਉ ਰਾਉ ਸਾਧ ਸੰਗ ਉਧਾਰ ਇਹੋ ਮਨ ਆਠ ਪਹਿਰ ਆਰਾਧ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਅਹੰਕਾਰ ਬਿਨਸੈ ਮਿਟੈ ਸਗਲ ਉਪਾਦ ਅਟਲ ਅਛੇਦ ਅਭੇਦ ਸਵਾਮੀ ਸਰਣ ਤਾਂ ਕੀ ਆਓ ਚਰਨ ਕਮਲ ਆਰਾਧ ਹਿਰਦੈ ਏਕ ਸਿਉ ਲਿਵ ਲਾਓ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਦਇਆ ਧਾਰੀ ਬਖਸਲੀ ਨੈ ਆਪ ਸਰਬ ਸੁ ਕਰ ਨਾਮ ਦੀਆ ਨਾਨਕ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਜਾਪ ਗੁਜਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੇ ਪ੍ਰਭ ਧਿਆਇਆ ਗਈ ਸੰਕਾ ਤੂਟ ਦੁਖ ਨਿਰਾ ਪੈ ਬਨਾਸੇ ਪਾਪ ਗਏ ਨੇ ਖੋਟ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀ ਮਨ ਪ੍ਰੀਤ ਮਿਲ ਸਾਧ ਬਚਨ ਗੋਬਿੰਦ ਧਿਆਏ ਮਹਾਂ ਨਿਰਮਲ ਰੀਤ ਰਾਉ ਜਾਪ ਤਾਪ ਨੇ ਕਰਨੀ ਸਫਲ ਸਿਮਰਤ ਨਾਮ ਕਰ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਆਪ ਰਾਖੇ ਭੈ ਪੂਰਨ ਕਾਮ ਸਾਸ ਸਾਸ ਨ ਬਿਸਰ ਕਬ ਹੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਸਮਰਥ ਗੁਣ ਅਨਿਕ ਰਸ ਨ ਕਿਆ ਬਖਾਨੇ ਅਗੰਤ ਸਦਾ ਅਕਥ ਦੀਨ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰ ਤਾਰਨ ਦਿਆਲ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਅਟਲ ਪਦਵੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦ੍ਰਿੜ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰ ਸਰਣ ਗੁਜਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਓ ਬਿੰਦ ਬਹੁ ਸਗਨ ਮਾਇਆ ਮਹਾਂਦੀਰਘ ਰੋਗ ਹਰ ਨਾਮ ਔਖਦ ਗੁਰ ਨਾਮ ਦੀਨੋ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਜੋਗ ਮਨ ਤਨ ਬਾਛੀਐ ਜਨ ਧੂਰ ਕੋਟ ਜਨਮ ਕੇ ਲਹਿ ਪਾਤਕ ਗੋਬਿੰਦ ਲੋਚਾ ਪੂਰ ਰਾਉ ਆਦਿ ਅੰਤ ਮਧ ਆਸਾ ਕੂਕਰੀ ਬਿਕਰਾਲ ਗੁਰ ਨਾ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਕੀਰਤਨ ਗੋਬਿੰਦ ਰਮਣ ਕਾਟਿਐ ਜਮ ਜਾਲ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋ ਮੋਹ ਮੂਠੇ ਸਦਾ ਆਵਾਗਮਨ ਪ੍ਰਭ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤ ਗੋਪਾਲ ਸਿਮਰਨ ਮਿਟਤ ਜੋ ਨੀ ਭਵਨ ਮਿੱਤਰ ਪੁੱਤਰ ਕਲਤਰ ਸੁਰ ਸ੍ਰਿਧ ਤੀਨ ਤਾਪ ਜਲੰਤ ਜਪ ਰਾਮ ਰਾਮਾ ਦੁਖ ਨਿਵਾਰੇ ਮਿਲੇ ਹਰ ਜਨ ਸੰਤ ਸਰਬ ਵਿਦ ਪਰਮ ਤੇ ਪੁਕਾਰੇ ਕਤੇ ਨਾਹੀ ਛੋਟ ਹਰ ਸਰਣ ਹਰ ਚਰਨ ਸਰਣ ਅਪਾਰ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਦ੍ਰਿੜ ਗਹੀ ਨਾਨਕ ਓਟ ਗੁਜਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਕਰ ਚੌਥਾ ਦੋ ਪਦੇ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਰਾਧ ਸ੍ਰੀ ਤਰ ਸਫਲ ਮੂਰਤ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਜੋਗ ਗੁਣ ਰਮਣ ਸਰਵਣ ਅਪਾਰ ਮਹਿਮਾ ਫਿਰ ਨਾ ਹੋਤ ਬਿਯੋਗ ਮਨ ਚਰਨਾਰ ਬਿੰਦੂ ਪਾਸ ਕਲ ਕਲੇਸ ਮਿਟੰਤ ਸਿਮਰਨ ਕਾੜ ਜਮਨ ਦੂਤ ਫਾਸ ਰਾਉ ਸਤਰ ਦਹਨ ਹਰ ਨਾਮ ਕਹਿਨ ਅਵਰ ਕਛੁ ਨਾ ਉਪਾਉ ਕਰ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸੁਆਉ ਗੁਜਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ ਸਰਨ ਕੇ ਦਾਤੇ ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ ਸਰਨ ਕੋ ਦਾਤਾ ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਸੁਖ ਰਾਏ ਜਾਹੇ ਕਲੇ ਸੁਮਿਟੈ ਭੈ ਭਰਮਾ ਨਿਰਮਲ ਗੁਣ ਪ੍ਰਭ ਗਾਏ ਗੋਬਿੰਦ ਤੁਜ ਬਿਨ ਔਰ ਨ ਠਾਉ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਵਾਮੀ ਜਪੇ ਤੁਮਾਰਾ ਨਾਉ ਰਹਾਉ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ਲਗੇ ਹਰ ਚਰਨੀ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ਕਵਲ ਪ੍ਰਗਾਸ ਭਏ ਸਾਧ ਸੰਗੇ ਦੁਰਮਤ ਬੁੱਧ ਤਿਆਗੇ ਆਠ ਪਹਿਰ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਸਿਮਰੈ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ ਆਪ ਤਰੈ ਸੰਗਤ ਸਭ ਉਧਰੈ ਬਿਨਸੈ ਸਗਲ ਦੰਦਾਲਾ ਚਰਨ ਆਧਾਰ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਭ ਸਵਾਮੀ ਓਤ ਪੋਤ ਪ੍ਰਭ ਸਾਥ ਸਰਣ ਪਰਿਓ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਤੁਮਰੀ ਦੇ ਰਾਖਿਓ ਹਰ ਹਾਥ ਗੁਜਰੀ ਅਸ਼ਪਦੀਆਂ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਕਰ ਪਹਿਲਾ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਏਕ ਨਗਰੀ ਪੰਚ ਚੋਰ ਬਸੀ ਅਲੇ ਬਰਜ ਤੋਰੀ ਚੋਰੀ ਧਾਵੈ ਤ੍ਰੈ ਦਸ
माल रखे जो नानक मोख मुकत सो पावे चेतो वासुदेव बनवाली राम हृदय जप माली राव उर्द मूल जिस साख तला तुलाहा उर्द मूल जिस साख तलाहा चार बेत जित लागे सहज पाए जाए ते नानक पार ब्रह्म लेव जागे पार जात करे आंगन मेरा पोप पतर तत डाला सर्वजोत निरंजन संभु छोड़ो बहुत जंदाला सुन सिखवंते नानक बिन में छोड़ो माया जाला मन विचार एक लिव लागे पुनरप जन्म ना काला सो गुरु सो सिख कथी अले सो वैद जे जाने रोगी तिस कारण काम ना तंदा ना ही तंदे गृह जोगी काम क्रोध अहंकार तजी अले लो मोह तिस माया मन ताते अवगत त्याया गुरु प्रसादी पाया ज्ञान ध्यान सब दात कथी अले सेत वर्ण सब दूता ब्रह्म कमल मद तास रसादंग जागत नाही सूता महा गंभीर पत्र पाताला नानक सर्व जुआया उपदेश गुरु गम पुनः न घर पंग बिकता जे अमृत पियाया गुजरी महला पहला कवन कवन जाचे प्रभ दाते ताके अंत न पर सुमार जैसी भूख होए अभ्यंतर तू समरथ सचदेव नहार ऐ जी जप तब संयम सच आधार हर हर नाम देहे सुख पाइये तेरी भगत परे पंडार रहो सुन समाध रह लिव लागे एकाएक शब्द विचार जल थल तरण गगन तै नाही आपे आप किया करतार ना तद माया मगर ना छाया ना सूरज चंद ना ज्योति अपार सर्व दृष्ट लोचन अभ्यंतर एका नजर सूत्र अनुसार पावन पानी अगन तिन किया ब्रह्मा विष्णु महेश आकार सर्वे जाचक तू प्रभदाता दात करे अपना विचार कोट तेतीस जाचे प्रभ नायक दिन दे टुट नाही भंडार उंदे भांडे कछ ना समावे सिद्ध अमृत परे निहार सिद्ध समाधि अंतर जाचे रिद्ध सिद्ध जाच करें जयकार जैसी प्यास होए मन अंतर तैसो जल देव है प्रकार बड़े भाग गुरु सेव है अपना भेद नाही गुरुदेव मुरार तांको काल नाही जम जो है बुझ है अंतर शब्द विचार अब तब अवर न मांगो हर पै नाम निरंजन दी जय प्यार नानक चात्रक अमृत जल मांगे हर जस दी जय कृपा तार गुजरी महला पहला ऐ जी जन्म मरे आवे फुन जावे बिन गुरगत नहीं काई गुरमुख प्राणी नामे राते नामे गत पत पाई पाई रे राम नाम चित लाई गुर प्रसादी हर प्रभु जाचे ऐसी नाम बढ़ाई रहाओ ऐ जी बहुते पेख करें पेखे आको केते उदर परन कहताई बिन हर भगत नाही सुख प्राणी बिन गुर गर्भ न जाई ऐ जी काल सदा सिर ऊपर ठाड जन्म जन्म वैराई सच सद रचे से बचे सदगुरु बुझ बजाई गुरु शरण आई जो न सके दूत ना सके संताई अवगत नाथ निरंजन रात निरपोष्यो लिव लाई ऐ जियो नाम जुड़ो नाम लिव लाभ सतगुरु टेक टिकाई जो तस पावे सोई करसी कीर्तना मिटिया जाई ऐ जी भाग परे गुरु शरण तुम्हारी मैं अवर न दूजी पाई अब तब को एक पकारो आद जुगाद सखाई ऐ जी रखो पैज नाम अपने की तुझे स्यों बाने आई
कर कृपा गुरु दर्स दिखावो होमे शब्द जलाई ऐजी क्या मांगो किस रहे न दिसई इस जग में आया जाई नानक नाम पदार्थ दिजाय हृदय कंठ बनाई गुजरी महला पहला ऐजी न हम उत्तम नीच न मध्यम हर शरणागत हर के लोग नाम रते केवल बैरागे सोग वे जोग विसर्जत रोग पाई रे गुर कृपा ते भगत ठाकुर की सदगुरु वाक हृदय हर निर्मल ना जम कान न जमकी बाकी रहाउ हर गुण रसन रवै प्रभ संग ज्योत पावे सहज हरि बिन हर नाम व्यर्था जग जीवन हर बिन नेफल मेक करी ऐजी खोटे ठौर नाही कर बाहर निंदक अत नहीं काई रोस करै प्रभक्स न मिट नित नित चढ़ाय सुवाई ऐजी गुर की दात न मिट कोई मेरे ठाकुर आप दिवाई निंदक नर काले मुख निंदा जन गुर के दात न पाई ऐजी शरण परे प्रभ भक्स मिलावे बिलम न अद्वाराई आनंद मूल नाथ श्रीनाथा सदगुरु मेल मिलाई ऐजी सदा दयाल दया कर रव्या गुरमत परमन चुकाई पारस पेठ कंचन तात होई सत्संगत की वड्याई हर जल निर्मल मानी सुनाने मजन सदगुरु पाई पुनरप जन्म नाही जन संगत ज्योति ज्योत मिलाई तू वर पुरख अगमत रोवर हम पंखी तुज माही नानक नाम निरंजन दिजाय जोग जोग शब्द सलाही गुजरी महला पहला कर चौथा एक ओंकार सदगुरु प्रसाद भगत प्रेम आराध तंग सज प्यास परम तंग बिला बिल बिनंतिया सुख पाए चित हितंग जप मन नाम हर सरणी संसार सागर तार तारण राम नाम कार करणी रहाओ ए मन मृत सुभ चितंग गुर शब्द हर रमणंग मत तत् ज्ञानंग कल्याण निदानंग हर नाम मन रमणंग चल चित वित परमा परमंग जग मोह मगन हितंग थिर नाम भगत दृढ़ मति गुरवाक सौद रतंग परमात परम न चुकै जग जन्म ब्याद खपंग अस्थान हरने के बलंग सत मति नाम तपंग एहो जग मोहित व्याप्तं दुख अधिक जन्म मरणं पज शरण सतगुर उबरै हर नाम रिद रमणं गुरमत न चल मन मन मनंग सहज विचारं सो मन निर्मल चित साच अंतर ज्ञान रतन सारं पै पाए भगत तर पवजल मना चित लाए हर चरणी हर नाम हृदय पवित्र पावन एहो शरीर तव सरणी लभ लोभ लहर निवारणंग हर नाम रास मानंग मन मार तुहि निरंजना कौ नानका शरणं गुजरी महला तीजा कर पहला एक ओंकार सतगुरु प्रसाद निरत करी एहो मन नाचाई गुर प्रसाद आप गवाई चित थिर राखै सो मुक्त होवै जो इच्छि सोई फल पाई नाच रे मन गुर के आगै गुर के भाणे नाचै तां सुख पावै अंत जम पाओ भागै रहौ आप नचाए सो भगत कहिए अपना प्यार आपे लाए आपे गावे आप सुनावै इस मन अंधे को मार्ग पाए अंधन नाचे सकत निवारे शिवकर नींद न होई शक्ति कर जगत सूता नाचे टापे अबरो गावे मन मुख भगत न होई सुनर वृत पख कर्मी नाचे मन जन ज्ञान बिचारी सिद्ध साधक लिव लागे नाचे जिन गुरमुख बुद्ध बिचारी खंड ब्रह्मंड त्रिगुण नाचे जिन लागी हर लिव तुम्हारी
जी जंत सब ही नाचे नाचा खानी चारी जो तुत पावे से ही नाचा इंजन गुरमुख शब्द लिवलाए से भगत से तत ज्ञानी जन को हुक्म मनाए या भगत सचे सिउ लिवलागे बिन सेवा भगत ना होई जीवत मरे ता शब्द विचारे ता सच पावे कोई माया के अर्ध बहुत लोग ना चाहे को बरला तत विचारी गुर प्रसादे सोए जन पाए जन को कृपा तुम्हारी एकदम साचा विसरै सावे लावृथा जाए साय साय सुरा संभाली आपे भगसे करे रजाए से ही नाचे जोत पावे जय गुरुम शब्द विचारी कौ नानक सह सुख पावे जिनको नजर तुम्हारी गुजरी महला चौथा कर दूजा एक ओंकार सतगुरु प्रसाद हर बिन जियरा रह न सके ज्यो बालक की रियाधारी अगम गोचर प्रभ गुरमुख पाई अपने सतगुरु के बलिहारी मन रे हर कीरत तर तारी गुरमुख नाम अमृत जल पाइये जिन को कृपा तुम्हारी रहो सनक सनंदन नारद मुन सेवै हंदन जपत रहे बनवारी शरणागत प्रहलाद जन आए तिनके पै सवारी अलख निरंजन एको वरतै एका ज्योत मुरारी सब जाचक तू एको दाता मंगे हाथ पसारी भगत जना की उत्तम बाणी गाव्या कथ कथा नित न्यारी सफल जन्म पया तिनके राय पे करे कुल आप तरे कुल तारी मन मुख दुबदा दुर्मत व्यापे जन अंतर मोह गुबारी संत जना की कथा न पावे ओए डूबे सन परवारी निंदक निंदा कर मल तोवे ओहो मल पख मायाचारी संत जना के निंदा व्यापे नार न पारी ए प्रपंच खेल किया सब करते हर करते सब कल तारी हरे को सूत वर्त जग अंतर सूत किंचा एकंकारी रसन रसन रस गावे हर गुण रसना हर रस तारी नानक हर बिन अवना मांगो हर रस प्रीत प्यारी गुजरी महला पंजवा कर दूजा एक ओंकार सतगुरु प्रसाद राजन में तू राजा कही है भूमन में भूमा ठकुराई ठाकुर में ठकुराई तेरी कोमन सिर कोमा पिता मेरो बड़ो तनिया गम्मा उतत कवन करी जय करते पेख रहे विस्मा रहो सुखियन में सुखिया तो कही है दातन सिर दाता तेजन में तेजवंशी कही है रसियन में राता सूरन में सूरा तू कही है भोगन में भोगी ग्रस्तन में तू बड़ो ग्रस्ती जोगन में जोगी करतन में तू करता कही है आचारण में आचारी साहन में तू साचा साह व्यापारण में व्यापारी दरबारन में तेरो दरबारा शरण पालन टीका लक्ष्मी के तक गनी न जाइये गणना सको सीका नामन में तेरो प्रभ नाम ज्ञानन में ज्ञानी जुगतन में तेरी प्रभ जुगता स्नानन में स्नानी सिद्धन में तेरी प्रभ सिद्धा कर्मन सिर कर्मा आज्ञा में तेरी प्रभ आज्ञा हुक्मन सिर हुक्मा ज्यों बुलाव है त्यों बोले स्वामी कुदरत कवन हमारी साध संग नानक जस गायो जो प्रभ की अत प्यारी गुजरी महला पंजवा घर चौथा एक ओंकार सतगुरु प्रसाद नाथ नरहर दीन बंधव पतत पावन देव पैस रास नास कृपाल गुण निध सफल स्वामी सेव हर गोपाल गुरु गोबिंद चरण शरण दयाल केशव तार जग पव सिंद रहाओ काम क्रोध हरण मद मोह दहन मुरार मन मकरंद जन्म निवार तरने तर पत राख परमानंद जलत अनिक तरंग माया गुरु ज्ञान हर रिद मंत छेद अवबंद करुणा में चिंत मेट पुरख अनंत
ਸਿਮਰ ਸਮਰਥ ਪਲ ਮਹੂਰਤ ਪ੍ਰਭ ਧਿਆਨ ਸਹਿ ਸਮਾਧ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਪ੍ਰਸੰਨ ਪੂਰਨ ਜਾਤੀਏ ਰਜ ਸਵਾਦ ਮੋਹ ਮਿਥਨ ਦੁਰੰਤ ਆਸਾ ਵਾਸਨਾ ਬੇਕਾਰ ਰੱਖ ਧਰਮ ਭਰਮ ਬੇਦਾਰ ਮਨ ਤੇ ਉਦਰ ਹਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤਨ ਆਡ ਆਡ ਭੰਡਾਰ ਹਰ ਨਿਦ ਹੋਤ ਜਨਾਨਾ ਚੀਰ ਖਲ ਮੁਗਧ ਮੂੜ ਕਟਾਖ ਸ੍ਰੀ ਧਰ ਪੈ ਗੁਣ ਮਤ ਧੀਰ ਜੀਵਨ ਮੁਗਧ ਜਗਦੀਸ਼ ਜਪ ਮਨ ਧਾਰ ਰਿਦ ਪ੍ਰਤੀਤ ਜੀ ਦਇਆ ਮਯਾ ਸਰਵਤਰ ਰਮਣਿੰਗ ਪਰਮਹੰਸੈ ਰੀਤ ਦੇਤ ਦਰਸਨ ਸਰਵਨ ਹਰ ਜਸ ਰਸਨ ਨਾਮ ਉਚਾਰ ਅੰਗ ਸੰਗ ਭਗਵਾਨ ਪਰਸਨ ਪ੍ਰਭ ਨਾਨਕ ਪਤਿਤ ਅਧਾਰ ਗੁਜਰੀ ਕੀ ਵਾਰ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਸਿਕੰਦਰ ਬਿਰਾਹਿਮ ਕੀ ਵਾਰ ਕੀ ਧੁਨੀ ਗਾਉਣੀ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਰੋਖ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਏਹੋ ਜਗਤ ਮਮਤਾ ਮੁਆ ਜੀਵਨ ਕੇ ਬਦ ਨਾਹੇ ਗੁਰ ਕੇ ਪਾਣੇ ਜੋ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਪਦਵੀ ਪਾਹੇ ਓਏ ਸਦਾ ਸਦਾ ਜਨ ਜੀਵਤੈ ਸੋ ਹਰ ਓ ਸਦਾ ਸਦਾ ਜਨ ਜੀਵਤੈ ਜੋ ਹਰ ਚਰਣੀ ਚਿਤ ਲਾਹੇ ਨਾਨਕ ਨਜ਼ਰੀ ਮਨ ਵਸੈ ਗੁਰਮੁਖ ਸਹਿ ਸਮਾਹੇ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਅੰਦਰ ਸਹਸਾ ਦੁਖ ਹੈ ਆਪੇ ਸਿਰ ਧੰਦੇ ਮਾਰ ਦੂਜੇ ਭਾਏ ਸੁੱਤੇ ਕਵੇ ਨਾ ਜਾਗੇ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਪਿਆਰ ਨਾਮ ਨਾ ਚੇਤੈ ਸਬਦ ਨਾ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹ ਮਨ ਮੁਕਾਇਆ ਚਾਰ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਨਮ ਬਿਰਥਾ ਗਵਾਇਆ ਨਾਨਕ ਜਮ ਮਾਰ ਕਰੇ ਖੁਆਰ ਪੌੜੀ ਆਪਣਾ ਆਪੋ ਪਾਇਨ ਤਦੋ ਹੋ ਨ ਕੋਈ ਮਤਾ ਮਸੂਰਤ ਆਪ ਕਰੇ

महला तिजाय को निचल नाम चन होर तन आवै जाए इस तन को तस्कर जो है नाम सके ना चक्का ल जाए ए हो हरतन जी ऐसे तेरा रहा जी ए नाले जाए पूरे गुरते पाए मनमुख पल्ले ना पाए तन व्यापारी नानका जिन नाम तन कटिया आए पौड़ी मेरा साहेब अत वड्डा सच गैर गंभीरा सब जगत इसके वास है सब तिस का चीरा गुर प्रसादि पाइए निश्चल तन तीरा कृपा ते हर मन वसे भेटै गुरसूरा गुणवंती सा लाहया सदा थिर निश्चल हर पूरा श्रोक महला तीजा त्रिगत नांदा जीव्या जे हर सुख पर हर त्याग दे दुख हुमे पाप कमाए मनमुख ज्ञानी माया मोह व्यापे तिन भोजन काई पाए हालत पलत होए सुख ना पावे अंत गए पछताए गुरु प्रसादी को नाम त्याए तसोमे विचों जाए नान जिस पूर्व होवे लिखिया सो गुरु चरणी आए पाए महला तीजा मनमुख ऊंदा कौल है ना तस भगत ना नाओ शक्ति अंदर वर्तदा कूड़ तिसका है ओ पाओ तिसका अंदर चेतना पे जय मुख फीका अलाओ ओ तन रलाए ना रलनो ना अंदर कूड़ सुआओ नान करते बणत बनाई मन में कूड़ बोल बोल डूबे गुरमुख तरे जा पर नाओ पौड़ी बिन बुझे वड्डा फेर पया फिर आवे जाई सतगुर की सेवा न कीतिया अंत गया पछताई अपनी कृपा करे गुर पाईए बिचों आप गवाई तृष्णा भुख बिचों तरै सुख वसै मन आई सदा सदा सा लाही हिरदय लिवलाई सलोक महला तीजा जे सतगुर सेवे अपना तसनो पूजे सब कोई सब न उपावा सिर उपाव है हर नाम प्राप्त होए अंतर शीतल सात वसय जप हृदय सदा सुख होए अमृत खण अमृत पैरण नानक नाम वढाई होए महला तीजा ए मन गुर की सिख सुन हर पावै गुणी निदान हर सुदाता मन वसै होमें जाय गुमान नानक नदरी पाइए तान दिन लागे ध्यान पौड़ी सत संतोख सब सच है गुरमुख पविता अंदरों कपट बेकार गया मन सहज जिता तै जोत प्रगास आनंद रस अज्ञान गविता अंदन हर के गुण रवै गुण प्रगट किता सबना दाता एक है को हर मिता श्लोक महला तीजा ब्रह्म बिंद सो ब्राह्मण कहिए जे अंदर हर लिवलाए सतगुरु पुछय सच संजम कमावे हम रोग ते सो जाए हर गुण गावे गुण संग्रह ज्योति ज्योत मिलाए इस जुग में को विरला ब्रह्म ज्ञानी जे होमे मेठ समाए नानक तसनो मिलिया सदा सुख पाइए जे अंदन हर नाम ते आए महला तीजा अंतर कपट मनमुख ज्ञान रसना झूठ बोलाए कपट किताए हर पुरख ना भिजाए नित वेख सुन सुभाए दूजे पाए जाए जग पर बुद्धे बिखमाया मोह सुवाए इत कमाणे सदा दुख पावे जमे मरे फिर आवे जाए सहसा मूल न चुकई विच विष्टा पचाए पचाए जिसनु कृपा करे मेरा स्वामी तस गुर के सिख सुनाए हर नाम त्यावे हर नाम गावे हर नाम अंत छाए पौड़ी जिन्ना हुक्म मनाए ओन ते पूरे संसार साहिब सेवन अपना पूरे शब्द विचार हर की सेवा चाकरे सच्चे शब्द प्यार हर का मैल तिनी पाया जिन होमे विच हो मारे नान गुरमुख मिल रहे जप हर नामा अवतार सलोक महला तीजा गुरमुख ध्यान सहित उपजाए सत नाम जित लाया गुरमुख अंदन राय रंग राता हर का नाम पाया
ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਵੇਖੈ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਬੋਲੈ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਸਹਿਜ ਰੰਗ ਲਾਇਆ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ ਤਿਮਰਾ ਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰ ਝੁਕਾਇਆ ਜਿਸਨੋ ਕਰਮ ਹੋਵੇ ਤੁਰ ਪੂਰਾ ਤਿਨ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਨਾ ਨਾ ਸੇਵਿਓ ਸਬਦ ਨਾ ਲਗੋ ਪਿਆਰ ਸਹਿਜੇ ਨਾਮ ਨਾ ਧਿਆਇਆ ਕਿਤੇ

0: सच्चा सोए। वाह वाह वे परवाह है, वाह वाह करे सो होए। वाह वाह अमृत नाम है, गुरमुख पावे कोय। वाह वाह कर्मी पाइये आप दया कर दे नानक। वाह वाह गुरमुख पाइये अंदर नाम लाए महला तीजा। बिन सतगुरु सेवे साथ न आवे दूजी नाही जाए। देव तेरा लोचिए बिन करमै न पाया जाए। जिन्हें अंतर लोभ विकार है दूजे पाए खुआए। जमण मर न चुके हमें विच दुख पाए। जिन्हें सतगुरु सिंह जलाया सो खाली कोई ना है। तन जम की तलब ना होवे ना हो दुख साए। नानक गुरमुख बरे सच्चे शब्द समाए।
1: सतगुरु नानक जिन कल राखी मेरी तू समरथ वड़ा। मेरी मत थोरी राम पालया किरत कणा पूरन दृष्ट तेरी राम। सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जीओ। तनासरी भगत रविदास जी की एक ओंकार। सतगुर प्रसाद हम सर दीन दयाल ना तुम सर अब पतियार क्या कीजे। बचनी तोरा मोर मन मान

बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, इहो जन्म तुम्हारे लिखे, कहे रविदास आस लग जीव, चिर पयो।

पिता एक सके हम बारक, तू मेरा गुरहाई। सुन मीता जियो हमारा बल बल जासी, हर दर्शन देहो दिखाई। सुन मीता तूरी कौ बल जाई, एहो मन तेरा भाई रहाउ। पाव मलोवा मल मल धोवा,

हर नाम है मीठा, जन नानक को गुर कृपा तारी, सब अकुल निरंजन दीठा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरु साहब जीओ। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निरवैर, अकाल मूरत आजू नीसै भंग गुर प्रसाद जप। आद सच जुगाद सच है भी सच, नानको सी भी सच, सोचै सोच ना हो वई, जे सोची लखवार, चुपै चुप ना हो वई, जे लाय रहा लवतार, भुख्या भुख ना उतरी, जे बन्ना पुरिया भार, सह सु सियाणपां लख है ता इक न चलै नाल, केव सचियारा होई केव कूड़े तुटे पाल, हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल, हुक्मी ओवन आकार हुक्म न कहा जाई, हुक्मी ओवन जी हुक्म लै वडियाई, हुक्मी उत्तम नीच हुक्म लिख दुख सुख पाई है, एक ना हुक्मी बगसीस एक हुक्मी सदा पवाई है, हुक्मे अंदर सब को बाहर हुक्म न कोए, नानक हुक्मे जे बुझै ता हुमे कहे न कोए, गावे को तान होवे किसे तान, गावे को दात जाने निशान, गावे को गुण वडियाईया चार, गावे को विद्या विखम विचार, गावे को साज करे तन खेहे, गावे को जी लै फिर देहे, गावे को जापे दिसे दूर, गावे को वेखे हादरा हदूर, कथना कथी न आवे तोट, कथ कथ कथी कोटि कोट कोट, दिंदा दे लैंदे थक पाहे, जुगा जुगंतर खाही खाहे, हुक्मी हुक्म चलाए राहु, नानक विसे वे परवाहु, साचा साहब साच नाए भाख्या भाउ अपार, आखे मंगे देह देह दात करे दातार, फिर के अगे रखी है जित दिसे दरबार, मोह के बोलन बोलिया जित सुन धरे प्यार, अमृत वेला सच नाओ वडियाई विचार, करमी आवे कपड़ा नदरी मुख दुआर, नानकी वह जानिए सब आपे सचियार, थापिया न जाए कीता ना होए, आपे आप निरंजन सोए, जिन सेव्या तिन पाया मान, नानक गावी है गुणी निदान, गावी है सुनिया है मन रखिए पाओ, दुख पर हर सुख घर ले जाए, गुरमुख नादं गुरमुख वेदं गुरमुख रिहा सुमाई, गोरी सर गुर गोरख बर्मा गुर, पार

विलास, क्या कपड़ क्या सेज सुखाली की जह भोग बिलास, क्या लश्कर क्या नेब खवासी आवे महली वास, नानक सच्चे नाम विण सबे टोल विनाश, पवड़ी जाति दे क्या हाथ सच परखिए, मोहरा होवे हाथ मरिए चखिए, सच्चे की सरकार जुग जुग जानिए, हुक्म ने सिरदार दर दी बाणिए, फरमानी है कार खसम पठाया, तब बलवाज विचार शब्द सुनाया, इक होवे असवार इक ना साखती, इकनी बदे पार इक ना ताखती, सलोक महला पहला, जाप काता कटिया रही सो पलरवाड़, सन की सारा चिथिया कण लया तन चाड़, दोए पुड़ चक्की जोड़ के पीसन आए बैठ, जोदार रहे सोबरे नानक अजब डिठ, महला पहला, वेख जे मिठा कटिया कट कुट बदा पाए, खुंडा अंदर रख के देन सो मल सजाए, रस कस टटर पाईए तपे तै विल लाए, पीसो फोग समालिए दिचे अग जलाए, नानक मिठे पतरिए वेखो लोका आए, पवड़ी इक ना मारण न चित आस कनेरिया, मर मर जम मेहनत किसे ना केरिया, आपनड़े मन चित कहन चंगेरिया, जमराजे नित नित मन मुख फेरिया, मन मुख लून हराम क्या क्या न जानिया, बदे करन सलाम खसम ना पाणिया, सच मिले मुख नाम साहिब पावसी, करसन तख्त सलाम लिखिया पावसी, महला पहला। सलोक माछी तारू क्या करे, पंखी क्या आकाश, पत्थर पाला क्या करे, खुसरे क्या घरवास, कुत्ते चंदन लाइए पीसो कुत्ती तहत, बोला से जे समझाई है पढ़ी है सिमरत पाठ, अंधा चानन रखी है दीवे बल है पचास, चौने सोए ना पाई है चुन चुन कावे खावे कास, लोहा मारन पाई है टह ना होए कपास, नानक मूर्ख ए गुण बोले सदा विनाश, महला पहला। केहा कंचन तुटे सार, अग्नि गंड पाए लोहार, गोरी सेती तुटे पतार, पुत्ती गंड पवे संसार, राजा मंगे दिते गंड पाए, पुखिया गंड पवे जा खाए, काला गंड नदियां मीह चोल, गंड प्रीति मिठे बोल, वेदा गंड बोले सच कोए, मोया गंड नेकी सद होए, इत गंड वरते संसार, मूर्ख गंड पवे मोह कमार, नानक आख एहो बिचार, सिफती गंड पवे दरबार, पौड़ी आपे कुदर साज के आपे करे बिचार, इक खोटे इक खरे करे खरे आपे परखण हार, खरे खजाने पाई है खोटे सटिए बाहर वार, खोटे सच्ची दर गए सुटी है किस आगे करे पुकार, सतगुरु पिछे भज पवे एहा करनी सार, सतगुरु खोट्यों खरे करे करे शब्द सवारन हार, सच्ची दरगह मनियन गुर कै प्रेम प्यार, गणत तिना दी को क्या करे जो आप बख्से करतार। सलोक महला पहला। हम जेर जिमी दुनिया पीरा मुसाए कर आया, एह रब्द बादशाह अफजू खुदाए, एक तू ही महला पहला, ना देव दान वानरा ना सिद्ध साधका तरा, हस्त एक दिगर कुई एक तुई महला पहला, ना दादे देहंद आदमी ना सप्त जेर जिमी, अस्त एक दिगर कुई एक तुई महला पहला, ना सूर सस मंडलो ना सप्त दीप नह जलो, अन्न पौन थिर ना कुई एक तुई महला पहला, ना रजक दस आगसे हमा हमारा एक आस बसे, अस्त एक दिगर कुई एक तुई महला पहला, परंदे नागे रहा जर दरखत आब आस कर, देहंद सुई एक तुई महला पहला, नानक लिलार लिखिया सोए मेठ न सा कह कोए, कला तरे हिरे सुई एक तुई पौड़ी, सच्चा तेरा हुक्म गुरमुख जानिया, गुरमति आप गवाए सच पछाणिया, सच तेरा दरबार शब्द निसाणिया, सच्चा शब्द विचार सच समाणिया, मन मग सदा कूड़ियार भरम भुलाणिया, विस्टा अंदर वास साधना साधना जाणिया, बिन ना वै दुख पाए
आवण जाणिया नानक पारख आप जिन खोटा खरा पछाणिया। श्लोक महला पहला सीहा बाजा द चरगा कुहिया इना खवाले काहा कह खान तिना मास खवाले एह चलाए राह द नदियां बिच टिब्बे दे खाले थली करे असगाह कीड़ा थाप दे पातशाही लश्कर करे सुआ जेते जी जी वह जी जेते जी जी वह लै साहा जी वाले ताके असहा नानक ज्यों ज्यों सच्चे पावे त्यों त्यों दे गिराह। महला पहला एक मासा हारी एक तृण खाहे एक ना छत्ती ही अमृत पाहे एक मिटिया मह मिटिया खाहे एक पौन सुमारी पौन सुमार एक निरंकारी नाम आधार जीवे दाता मरे न कोए नानक मुठे जाहे ना ही मन सोए पौड़ी। पूरे की कार का पूरे गुर की कार कर्म कमाई है गुरमति आप गवाए नाम ते आई है दूजी कार लग जन्म गवाई है बिन नावे सब विस पैजे खाई है सच्चा शब्द सलाहे सच समाई है इन सत गुर सेवै नाही सुख निवास फिर आई है दुनिया खोटी रास कूड़ कमाई है नानक सच खरा सलाह पत स्यों जाई है। श्लोक महला पहला तुद पावे तां भावे गावे तुद पावे चल नावे जा तुद पावे तां करह बिपूता सिंगी नाद बजावे जा तुद पावे तां पढ़े कदे बा मुला सीख कहावे जा तुद पावे तां होवे राजे रस का रस कस बहुत कमावे जा तुद पावे ते गावे सिर मुंडी कट जावे जा तुद पावे जाहे दसंतर सुन गल्ला कर आवे जा तुद पावे नाए रचावे तुद पाणे तू पावे नानक एक कहे बेनंती होर सगले कूड़ कमावे। महला पहला जा तू वड्डा सब वड्याईया चंगे चंगा होई जा तू सच्चा ता सब को सच्चा कूड़ा कोई न कोई आखण वेखण बोलण चलण जीवन मरना तात हुक्म साज हुक्मे बिच रखे नानक सच्चा आप पौड़ी। सतगुर सेवन संग भरम चुकाई है सतगुर अखे का आखे कार सुकार कमाई है सतगुर होए दयाल ता नाम त्याई है लाहा भगत संसार गुरमुख पाई है मनमुख कूड़ गवार कूड़ कमाई है सच्चे दे दर जाए सच चंबाई है सच्चे अंदर महल सच बुलाई है नानक सच सदा सच्यार सच समाई है। श्लोक महला पहला कल काती राजे का साई धर्म पंख कर उडरिया कूड़ अमा बस सच चंद्रमा दिसे नाही कह चढ़िया हो पाल विकुनी होई आधरे रहा न कोई बिच हमें कार बिच हमें कर दुख रोई कहो नानक किन बेद गत होई। महला तीजा कल कीरत प्रगट चानन संसार गुरमुख कोई उतरे पार जिसनो नदर करे तिस देवे नान गुरमुख रतन सोले वै पौड़ी भगता तै सह सारिया जोड़ कदे ना आया करता आप पुल है ना भुल किसे दा भुलाया भगता पे मेलियन जिनी सचो सच कमाया सह सारी आप खुआन जिनी कोड़ बो कूड़ बोल बोल बिख खाया चलन सार न जाननी काम क्रोध विस बधाया

दाता धरत महत दिन सरात दोए दाई दाया खेले सगल जगत चंगे आईया बुरे आईया वाचे धर्म हदूर करमी आपो अपनी के नेड़े के दूर जिनी नाम ते आया गए मसकत काल नानक ते मुख उजले होर केती छुट्टी नाल पौड़ी सच्चा भोजन पाओ सतगुर दस्या सच्चे ही पते आए सच विगसिया सच्चे कोट ग्राए निज कर वसिया सतगुर तुठे नाओ प्रेम रहस्या सच्चे दैदी बाण कूड़ न जाइए झूठो झूठ बखान सुमहल खोआईए सच्चे शब्द निशान ठाक ना पाइए सच सुन बुझ बखान महल बुलाइए श्लोक महला पहला पहरा अगन हिवे घर बादा भोजन सार कराई सगले दुख पानी कर पीवा धरती हाक चलाई

संसार किन समझाइए, सच न तरे प्यार तंद ताइए, काल बुरा खै काल सिर दुनियाई है, हुक्मी सिर जंदार मारे दाई है, आपे दे प्यार मन वसाई है, मोहत ना चसा बिलाव भरिए पाइए, गुर प्रसादी बुझ सच समाइए, श्लोक महला पहला, तुम्मी तुम्मा विस अकत धूरा निम फल, मन मुख वसै तिस जिस, तू चित न आवही, नानक कहिए किस।

चलई सच रहे सो विष्ट परवान सर तंदे आगास को क्यों पहुंचे बाण अगे ओह अगम है वाहे दड़ जान पौड़ी नारी पुरख प्यार प्रेम।

होते इस नान हो वंजत पस पई सिर खुत है पानी बिचो रतनो पन्ने मेर किया मा धानी अड़सठ तीर्थ देवी थापे पुरबी लगे बाणी नाय नवाजा ना ते पूजा नावन सदा सुजानी मोया जीव दया गत होवे जा सिर पाई है पानी नानक सिर खुत है सैतानी इना गल ना पानी उठे होए बिलावल जी जुगत समाणी उठे अन कमाद कपाहा सबसे पड़दा होवे उठे कर चरह नित सुरही सा धन दही बिलोवे तित के होम जग सद पूजा पइये कारज सोहे गुरु समुंदन दी सिखन सब सिखी नात जित बड़ियाई नानक जे सिर खुत है नावन नाही ता सत चटे सिर छाई महला पह दूजा अग्गी पाला के करे सूरज के ही रात चंद अनेरा के करे पौन पानी क्या जात धरती चीजी के करे जिस बिच सब कुछ होए नानक का पत पाईए जा पद रखे सोए पौड़ी तुद सच्चे सुबहान सदा कलाणिया तू सच्चा तू सच्चा दीवान होर आवन जानिया सच जे मंग है दान से तू दे जे हया सच तेरा फुरमान सब दे सोहया मन्या ध्यान तू देते पाई मन्या ज्ञान ध्यान तू देते पाया कर्म होवे निशान न चले चलाया तू सच्चा दा तार नित देवे चढ़े सवाया नानक मंगे दान जो तुद पाया श्लोक महला दूजा दिखिया आख बुझाया सिफती सच समेयो तिनको किया उपदेसियन जिन गुरु नानक देओ महला पहला आप बुझाए सोई बुझे जिस आप सुजाए तिस सब किछ सूजै कह कह कथना माया लूजै हुक्मी सगल करे आकार आपे जाने शब्द विचार अखर नौ अखियो आप लह परात होवे जिस

सरना रहाओ, सतगुरु मिले त दुबदा भाग, कमल विगास मन हर प्रभ लागे, जीवत मरे महारस आगे, सतगुर मिले सच संजम सूचा, गुर की पौड़ी उच उचा, कर मिले त जम का पाओ मूचा, गुर मिले मिलंक समाया, कर कृपा कर महल दिखाया, नानक हों मैं मार मिलाया। गौड़ी महला पहला किरत पया नह

हालत न सोबा पलत न टोई अहला जन्म गवाया हाँ खरी दोहेली होई बाबा नानका मेरी बात न पूछे कोई रहाओ ताजी तुरकी सोए ना रूपा कपड़ केरे पारा किसी ही नाल न चले नानक चढ़ चढ़ पै गवारा कूजा मेवा मैं सब किछ चाखिया इक अमृत नाम तुम्हारा दे दे नीब दिवाल उसारी पर

ठाकुर पारा हम तिसके वन जारे जियो पिंड सब रास किया तिसे की मार आपे जी वाले गौड़ी चेती महला बहला अवर पंच एक जना अवर पंच हाँ।

भरत केल करे नित कामण, अवर लुटेन सो पंच जना। ताहे मुडोली लुटिया देहोरा, सातन पक पकड़ी एक जना। जम डंडा गल संगल पड़िया, भाग गए से

गौड़ी चेती महला पहला मुद्रा ते कट पीतर मुंदरा काया की जय खिंथाता पंच चेले बस की जय रावल एह मन की जय डंडाता जोग जुगत एव पाविस्ता एक बा एक शब्द दूजा होर नास

पहला औखद मंत्र मूल मन एक है जे कर दृढ़ चित की जय रे जन्म जन्म के पाप कर्म के काटन हारा ली जय रे मन एको साहेब पाई रे तेरे तीन गुणा संसार समावे अलखन लखना जाई रे रहाओ सकर खंड माया तन मीठी हम तो पांड उचाई रे रात अनेरी सूजस नाही लज टूक समूसा पाई रे मन मुख कर है ते ता दुख लागे गुरमुख मिले वडाई रे जो तिन किया सोई होआ किरत ना मिटिया।

अंत न चाहे जाए, अंत को चाहन जो गए सो आए अंत गवाए। अपन लिया जे मिले ता सब को पाखट होए, कर्मा उपर निबड़े जे वेलो चै सब कोए। नानक करना जिन किया सोई कार करे, हुक्म न जा

महला पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। जय कर कीर्ताखिए करते का होए बिचारो, तित कर गावो सोहेला शिविर हो सृजनहारो। तुम गाव हो मेरे निरपाओ का सोहेला, हो वारी जाओ जित सोहेल सदा सुख होए रहाओ। नित नित जियड़े समालियन देखेगा देवन हार, तेरे दाने कीमत ना पवे तिस दाते कावन सुमार। संबत साह लिखिया मिलकर पाव हो तेल, देहो सजन सीसड़िया ज्यो।

सत्य सोए। सत बसे साची सब कार, उत्तम करनी शब्द विचार, गुरते साची सेवा होए, गुरमुख नाम पछाणे कोए। जीवै दाता देवनहार, नानक हर नाम में लगे प्यार। गौड़ी ग्वारे री महला तीजा, गुरते ज्ञान पाए जन कोए, गुरते बूझे सी जै सोए, गुरते सहज साच विचार, गुरते पाए मुक्त द्वार। पूरे भाग मिले गुर आए, साचे सहज साच समाए रहाओ। गुर मिले तृष्णा भजन तृष्णा अग्न बुझाए, गुर ते शांत पवसे मन आए। गुरते पावित पावन सच सो सच होए, गुरते शब्द मिलावा होए। बाज गुरु सब भरम पुलाई, बिन नावे बहुता दुख पाई। गुरमुख होवे सो नाम त्याई, दर्शन सचे सच सची पत होई। किसनो कहिए दाता इक सोई, कृपा करे शब्द।

सच मन निर्मल होए, सच निवास करे सच सोए, सच्ची बाणी जुग चारे जापे, सब किछ साचा आपे आपे। कर्म होवे सतसंग मिलाए, गो हर गुण गावे बैस सो थाए रहाओ, जलो एह जेहवा दूजे पाए, हर रस चाह हर रस ना चाखे, फीका आलाए बिन बूझे तन मन फीका होए, बिन नावे दुखिया चलिया रोए, रसना हर रस चाख्या सहज सुभाए, गुर कृपा ते सच समाए, साची सच राती गुर शब्द विचार, अमृत पीवे निर्मल तार, नाम समावे जो पांडा होए, उंदे पांडे टिके ना कोए, गुर शब्दी मन नाम निवास, नानक सच पांडा जिस शब्द प्यास। गौड़ी ग्वारेरी महला तीजा, एक गावत रहे मन साध न पाए, हो मैं बिच गावे बिरथा जन्म बिर गावे बिरथा जाए, गावन गावे जिन राम नाम प्यार, साची बाणी शब्द विचार, गावत रहे जे सतगुर पावे, मन तन राता नाम सुमा सुहावे रहाओ, एक गावे एक भगत करे, नाम न पावे बिन असनेह, सच्ची भगत गुर शब्द बिया प्यार, अपना पिर राख्या सदा उर तार, भगत कर है मूर्ख आप जुनाव है, नच नच टपे बहुत दुख पाव है, नचिए टपिए भगत न होए, शब्द मरे भगत पाए जन सोए, भगत वछल भगत कराए सोए, सच्ची भगत बिच हो आप खोए, मेरा प्रभु साचा सब बिद जाने।

जिसनु बख्शे दे वड़ियाई गुर प्रसादी, गुर प्रसाद हर वसै मन आई रहाओ। गुरमुख करनी कार कमावे ता इस मन की सो जी पावे। मन में मत में गल मिकदारा, गुर अंकस मार जीवा लनहारा। मन असाध साधे जन कोए, अचर चरे ता निर्मल होए। गुरमुख एह मन लाया सवार, हों मैं बिच हों तजे विकार। जोत राखियन मेल मिलाए, कदे न बिछड़े शब्द समाए। अपनी कला पे ही जाने, नानो गुरमुख नाम पछाने। गौड़ी ग्वारे री महला तीजा, हों मैं बिच सब जगत ब जग बौराना। दूजे पाए भरम पुलाना, बहु चिंता चित बै आप ना पछाना। तंदा करत्या अंधन विहाना, हिरदे राम रम हो मेरे पाई। गुरमुख रसना हर रसन रसाई रहाओ। गुरमुख हृदय जिन राम पछाता, जग जीवन सेव जुग चारे जाता। हों मैं मार गुर शब्द पछाता, कृपा करे प्रभ कर्म विधाता। से जन सच्चे जो गुर शब्द मिलाए, तावत बारजे ठाकर हाए। नाम नव नित गुर ते पाए, हर कृपा ते हर वसे मन आए। राम राम करते हैं सुख शांत शरीर, अंतर वसे न लागे जम पीर। आपे साहेब आप विद

कर मन मीत, प्राण उधार राखो सद चीत राह। रे मन मेरे तू ताको सेव, आदि पुरख अपरंपर देव। तेसी उपर मन कर तू आसा, याद जुगाद जांका प्रवासा। जांकी प्रीत सदा सुख होए, नानक गावे गुर मिल सोए। गौड़ी महला पंजवा, मीत करे सोई हम माना, मीत के करतब कुशल सुमाना। एक टेक मेरे मन चीत, जिस किछ करना सो हमरा मीत।

भगवंत भगत को पहो किछ नाही आदर देवत जाम ताज गोपाल आन जो करनी सोई सोई बिस्त कहाम सोई सोई बिस्त खाम चरण कमल हृदय गहो नानक सुख समूह विश्राम चरण कमल हृदय गहो नानक सुख समूह विश्राम वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ।

ऊंचे से ऊंचा भगवंत सकल समग्री तुमरे सूत्र तारी तुम ते हो सौभाग्याकारी तुमरी गात मैं तुम्हें जानी नानक दास सदा कुरबानी श्लोक देन हार प्रभ छोड़ कै लग आन सुहाए नानक हुन से जे बिन आवे पत जाए अष्टपति दस वस्तु लै पासे पावे एक वस्त कारण भी खुट गुवावे एक पीना दे दस पियले तो मूड़ा को कहां करे जे ठाकर सो ना ही चारा ता को की जे सब नस्कारा जाके मन लागा प्रमिठा सब सो तहो मन बूठा जे जन अपना हुक्म नाया सब थोक नानक तिन पाया अगंस अपनी दे रास खात पी बरते नंद उलास अपनी अमान कछ बासले अज्ञानी मन रोस करे अपनी प्रतीता पी खोवे बर उसका विश्वास न होवे जिसकी बस्त जागे राखे प्रभ की आज्ञा माने माथे उस ते चौगन करे निहाल नानक साहेब सदा दयाल अनक पात्मा के हित सर्प होवत जान अनेत बिरखी साया सुसंग लावे ओ बिनसे ओ मन पछतावे जो दिसे सो चालन हार लपट रहो तो अंधार बटाऊ सो जो लावे ने ता को हाथ न आवे के मन हर के नाम की प्री सुखदाई कर कृपा नानक आप लै लाई मिथ्या तन धन कुटुंब सबाया मिथ्या होमे ममता माया मिथ्या राज जो बंतन माल मिथ्या काम क्रोध विकराल मिथ्या रस तस्ती असव बस्त्रा मिथ्या रंग संग माया भीखस्ता मिथ्या त्रोह मोह अभिमान मिथ्या आपस ऊपर करत गुमान आस्ते भगत साध के सरन नानक जप जप जीवे हर के चरण मिथ्या संपनिंदा सुने मिथ्या हथ पौधर कोहिरे मिथ्या नेत्र पेख पात्या रुपाद मिथ्या रसना भोजना स्वाद मिथ्या चरण पार विकार को तावे मिथ्या मन पर लोभ लभावे मिथ्या तन नहीं पर उपकारा मिथ्या बास लित बिकारा बिन बूझे मिथ्या सब भये सफल दे नानक हर नाम ले बिरथी साध की आर जा साहिब बिना के हो सुचा बिरथा नाम बिना तनंद मुखा मंता के दुर्गंध बिन सिमरन नैन मिथा बेहाये मेघ बिया जो खेती जाए गोबिंद भजन में बिरथ सा काम जो कृपा ते नारदाम तन तन ते जे जन जे कट बसे नाओ नानक ताके बल बल जाओ रहत अवरक शवर कमात मन प्रीत मोगन लापत जन नार प्रभु परबीन बाहर भेख न काहू पीन अवर उपदेसे आप न करे आव जाव जन्मे मरे जिसके अंतर बसे निरंकार तिसकी सिख तरे संसार जो तुम भाने तिन प्रजाता नानक उंजन चन पराता करो बेनती पार बंसा जाने अपना किया आपे मने आपे आप करतन बेरा किसे दूज नाथ किसे बजावत नेरा उपास अनप साव ते रहत साव कश जाने आत्म की रहत जिस भावे तिस लै लाए थान थने तर रह समाए सो सेवक जस कृपा करी निमक निमक जप

संग पावे जन कोय। करके पाए अंतर उदारे पस प्रेम उत्पात्र को उतारे। सब रो काक दुनाम कल्याण रू मंगल गुण गाम। काहो जो कितना पाये धर्म नानक तस मिले जस लिखा तुर कर्म। जस कह मन पाप नाम का निवास तिसका नाम सत राम दास। आत्म राम ते नदरे आया दास अतन पाया तन पाया। सदा नेट नेट हा जान सो दा दरगे परवान। अपने दास को आप कृपा करे ते दा को सा सो जी परे। सगल संग आत्म उदास ऐसे जुगत नानक राम दास। प्राप्त

आकाश ब्रह्मांड कई कोट हुए अवतार, कई ज्योत किन्नो विस्तार, कई बार पसरो पसार, सदा सा एक अहंकार, कई कोट किन्ने बोपात, प्राप्त हुए प्रम समात, ताका अंत न जाने कोई, आपे आप नान प्रसोई, कई कोट पार ब्रह्म के दास, तिन होव तत् प्रगास, कई कोट तत् के बेते, सदा निहर एको नेत्रे, कई को नाम रस पीवे, अमृत पै सदे जीवे, कई को नाम गुण गावे, आत्म रसो सह समावे, अपने

वरन जा कर नेत्र फो तस्का मंत्र न जाने होर आनंद रूप मंगल सा जाके सर्व तो सुने कर ताके राज में राज जोग में जोगी तप में तपिस कृष्ण में भोगी त्या त्या भगत सुख पाया नानक तस पुरख नियंत न पाया जाके लीला कीमत न आये सगल दे हर अब गाये पिता के जन्म के जाने पूज सगल पुरोई अपने सूत समत ज्ञान ध्यान जंदे जन दास नाम त्यावे से तै गुण में जग को परमाए जन्म रे फिर आवे जाए ऊच नीच तके स्थान जैसा नावे तैसा नानक जानम।

उत्तम श्लोक साधके बचन अमलीक लाड़े रत्न सुंत कमाप्त होत उदार आप त्रैलोक निस्तार सफल जीवन सब ताका संग जाके मन लागा हर रंग जय जय शब्द नाद बाजे सुन सुन नंद करे प्रभ गाजे प्रगटे गोपाल नाथ के माथे नानक उदरे तन के साथे सरन जो सो सन्नी आए कर कृपा प्रभ आप मिलाए मिट गए बैर पै सवरैन अमृत राम साध संग लैन सुप्रसन्न पै गुरदेव पूर्ण हुई सेव की सेव आ जंजाल बिकार ते रहते राम ना सुरसना कहते कर प्रसाद द प्रभ तहारी नानक निभि खिप हमारी प्रभ की उस्तत करो संत मीत सावधानी का गचीत सुखमनी सहज गोबिंद गो नाम जिस मन बसे सुहोत निधान सर्व इच्छा ताकि पूर्ण होए प्रधान पुख प्रगट सालोए सब ते ऊच पाए स्थान बह न होवे आवन जान हर तन खाट चले जन सोए नानक जिसे प्राप्त होए खेम शांत रिद नाभ निद बुद्ध ज्ञान सब ते सिद्ध विद्या तप जो प्रत्यान ज्ञान सिठ उत्तम स्नान।